इट हैपेंस सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर और इट हैपेंस के सफर में आपका साथ सताक्षी दे रही है। कई बार रिश्तों में आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, आपको हर चीज में खुद की गलती नजर आती है, आप किसी भी चीज को लेकर लाइफ में क्लियर नहीं होते, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। और जो भी लाइफ में हो रहा है, जो भी कुछ भी गलत है, उसका ब्लेम आप खुद पर लेना शुरू कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो याद रखिए कि आप एक सही रिश्ते में नहीं हैं। आपका कंट्रोल जो है वो आपने किसी और के हाथ में दे दिया है, क्योंकि प्यार का मतलब आपको कंफ्यूज्ड करना नहीं होता है, आपको कंट्रोल करना नहीं होता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज करना होता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ाना होता है, है ना। तो अगर कोई इंसान, कोई बंदा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको कंफ्यूज्ड कर रहा है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है, इसका मतलब कि यार वो प्यार तो नहीं है, आप एक गलत रिश्ते में बंधे हुए हैं। फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, है ना, तो चाहे दोस्ती है, चाहे मोहब्बत है, चाहे रिश्तेदारी है, कुछ भी है, आपको उससे निकलने की जरूरत है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी, मेरे साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

क्लैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रिजु ब्रिस्वानी 170 वाले पर। देखिए एक सच्चा इश्क सच्ची मोहब्बत जो है उसमें ड्रामा कम होते हैं। हम कहते हैं ना कि जो ड्रामे वाला प्यार है ना, जो दिखावटी प्यार है, जो ज्यादा दिखाया जा रहा है उसमें सच्ची मोहब्बत है। लेकिन नहीं, प्यार का मतलब हमेशा एक इंसान की आपकी लाइफ में होने का, आपसे मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि वो प्यार हर वक्त वो दिखाता घूमे। कुछ लोग चाहते हैं कि यार वो इंसान जो है हमारी ज़िंदगी में हो, जैसे सामने वाला है वो अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो केयरिंग है, या वो उस प्यार को हमेशा हर जगह दिखाता है। देखिए प्यार जब दिखावा बन जाता है तो वो प्यार रहता नहीं है। असली मोहब्बत तो वो है जो खामोश रहकर निभाई जाती है ना। तो दिखावा चाहे शोहरत का हो, इज्जत का हो, या फिर मोहब्बत का हो, कभी सही नहीं होता। और चलिए इसी बात पर, हमारे दिखावे फ्री वाले प्यार के नाम पर एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए एंड सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 170 पर।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।

0: सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम जोग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: अरे ओ खिलाड़ी, आज संडे को फ्री, बोलो लोगे हमारे संग सेल्फी।
3: Okay,

लाइफ में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? वो जिनके पास पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, पोजीशन है? बिल्कुल भी नहीं। लाइफ में सबसे सबसे सबसे ज्यादा खुश वो लोग रहते हैं जो भूल जाते हैं, अच्छा उसने मेरे साथ ये किया था, उसने ये कहा था, भाई साहब उन्हें याद ही नहीं रहता कि जो है किसने क्या कहा था। और यकीन मानिए मैं सच कह रही हूँ, ये भूलने वाले जो लोग हैं, आय हाय, मतलब वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब हैं, वो सबसे ज़्यादा खुश हैं, बिकॉज लाइफ में उन्हें ये टेंशन

भाई इससे बदला लेना है, इसने वो कहा था, वो गांठ बना के रखनी है, बात हुई और वो भूल गए, है ना। लाइफ को बेसिकली ऐसे लोग जीते हैं, लाइफ में आगे का देखते हैं, इस वक्त में वो रहते हैं, इस वक्त को याद रखते हैं, पिछला क्या बीता है, पिछला क्या गुजरा है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उससे मतलब नहीं है। बहुत सारी कड़वी यादें वो दिन गुजरने के साथ ही भुला दिया करते हैं। ऐसे लोगों से ज्यादा खुशनसीब और खुश इंसान आई डोंट थिंक की कोई और है। ऐसे लोगों के नाम जिनको है भूलने की बीमारी, प्ले करती हुई अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 FM पर।

अच्छा, लेडीज अक्सर ये कंप्लेन करती हैं कि हस्बैंड्स या बॉयफ्रेंड्स या जिस रिलेशनशिप में हैं वो लोग जो है उनका ख्याल नहीं रखते और उनसे हमेशा झगड़ा करते हैं और बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं है उन्हें। तो देखिए, आज मैं इस बात को थोड़ा सा ज़रा भाई क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है, और बल्कि जो एक रिसर्च हुआ है, हालिया रिसर्च, उसमें ये पाया गया है कि मेल्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब वो उस औरत से बात करते हैं या उस लेडी से बात करते हैं, उसके शब्द उनके कानों में पड़ते हैं जो उनके दिल के बहुत ही करीब है, जो उनको सुकून देती है ना। वो लेडी जिसके साथ रहकर उन्हें सुकून मिलता है, अगर वो सिर्फ इतना भी पूछ ले कि तुम कैसे हो, दिन कैसा गुजरा, तो वो पूरे दिन की जो थकान है वो उसे निकालने के लिए, उसे उतारने के लिए वो एक लाइन वो काफ़ी है। और जैसे ही ये शब्द जो है सिर्फ हेलो या उसकी आवाज़ उनके कानों में पड़ती है तो उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो दिन भर की थकान, वो फ्रस्ट्रेशन, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है ना। हाँ, तो बस ये चीज़ें जो हैं ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं और धीरे धीरे हमें समझ में आती हैं या नहीं भी आती हैं, हम नहीं समझते, बट फैक्ट्स बहुत सारे हैं जो आपको एक अलग ही एहसास करवाते हैं। और उसी एहसास के नाम, लेडीज खुश हो जाइए कि आपकी आवाज़ सुनकर भाई किसी को बड़ा सुकून मिलता है। और उसी आवाज़ के नाम ये अगला ट्रैक है, इसे सुनिए और हमारे साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर, आप हैं सताक्षी के साथ।

0: अरे मैडम आइए आइए, कैसी हैं आप? ये रहा आपकी शादी का कार्ड।
1: अरे वाह,
2: लाइक इट?
3: या इट्स नाइस।
0: भैया खुद डिजाइन करके गए थे?
1: ये रहा डिजाइन।

कभी आपने सोचा है कि किसी का एक मैसेज आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे बन जाता है? किसी का हाय या सिर्फ भी आपका पूरा दिन बना देता है। हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन उससे बात किए बिना चैन भी नहीं मिलता, सुकून भी नहीं मिलता। जब वो पास ना हो तो दिल बेकरार रहता है उसे ढूंढने के लिए, और उसके पास होने पर दिल को लगता है जैसे उसे सब कुछ मिल गया। तो हाँ, लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ सिर्फ होने से ही आपको स्पेशल फील होता है, जिनके साथ सिर्फ होने से ही आपका दिन बन जाता है, और जिनकी खुशी आपको अपनी खुशी सी लगती है। हर ऐसे ही लोगों के नाम ये अगला ट्रैक प्ले कर रही हूँ, इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस, रेडियो प्रस्वानी 107.0 वन एम पर।

फ्रेंड्स, ये था आज एक और इट हैपेंस पे सताक्षी का आपके साथ साथ। आज फिर से हमने कुछ प्यार भरी और बेहतरीन बातें की और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये साथ भी आपको जरूर अच्छा लगा होगा, जरूर पसंद आया होगा। तो कुछ और बातों के साथ, जिंदगी के कुछ खास किस्सों के साथ और हमारी एक नई सुबह के साथ कल फिर से होगी इट हैपेंस में आपके साथ हमारी एक और मुलाकात। आज के सफर से अब लेती हूँ इजाजत। हैव अ ग्रेट डे, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।

हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए? डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक. Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: मिक्सिंग इन द हाउस।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

हाँ जी, थैंक यू फिर तो बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसन वन एम ते 4-6 संदेश शलक दिना उस बने हुए। अगला जेड़ा नाम है गया ना उसनों सुन के तो उसी हैरान जरूर हो जाऊंगे क्योंकि वो पट खानदान दे नाल जुड़े हुए है। आलिया पट बिल्कुल भी नहीं है नाम, इस बारे सोचियो ना ते ना है शाहीन भट्ट, राम है जी पूजा भट्ट। जी हाँ, पूजा भट्ट का नाम इस लिस्ट विच शामिल है तो सब हैरान हो गए होंगे पर यह सच है। पूजा भट्ट नूं शराब की लत लग गई सी। पूजा भट्ट ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्होंने जिंदगी शराब की लत की वजह नाल बुरी तरह के नाल प्रभावित भी हुई सी जिस तों निकलण दे विच उन्हां नूं काफी टाइम लग गया सी।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: लगता रूम में रह गया।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपको मिलने के लिए और आपसे बात करने के लिए और आपसे लिए आपके लिए ये प्रोग्राम लाने के लिए मैं 7 समुंदर पार करके आई हूं, या बहुत नदी और बहुत ज्यादा मतलब ऐसी ऐसी वाटर बॉडीज पार करके आई हूं, झरने, नदियां, समुंदर, तो गलत नहीं होगा। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा वाई सो ड्रामेटिक। वेल, ड्रामेटिक तो हो गया है आज सच में मुझे ड्रामेटिक हो जाना चाहिए, बिकॉज द एफर्ट दैट आई हैव मेड यू नो जस्ट टू मीट यू इज इनसेन, लिटरली। मतलब मैं आप लोगों से मिलने के लिए लिटरली 7 समुंदर पार करके आई हूं, और उसमें कोई भी मतलब इट्स नॉट इवन मेटाफोरिकली आई एम स्पीकिंग, इट्स अ रियल थिंग। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि पता नहीं क्या हो गया है निव्या शर्मा को, पर बहुत ज्यादा ड्रामेटिक फील कर रही है। चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ है, लेकिन पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और माफी चाहते हैं देरी से मिलने के लिए। बट देन अगेन, देर से आए दुरुस्त आए, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर प्रोग्राम की शुरुआत होती है हेल्दी रिचुअल के साथ, और वो हेल्दी रिचुअल जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रीजन बीइंग वो हमें हेल्दी रखता है मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, आइए करते हैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरुआत। क्या बात, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ बिना देर किए शुरुआत करेंगे एक जबरदस्त से गाने के साथ। गाना जो है वो एक बहुत ही रोमांटिक में प्ले करने वाली हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मौसम उस रोमांटिक गाने की तरफ इशारा कर रहा है, और मौसम कह रहा है कि यही रोमांटिक गाने की तरह जो है कुछ प्ले करूं निव्या शर्मा। सो आई एम लाइक ओके, अगर आप कह रहे हो तो जरूर करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं गाना प्ले करने वाली हूँ वो है चांस सिफारिश। जी हाँ, गाऊंगी नहीं, सो डोंट वरी। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: आज फुर्सत का स्वाद भी चख लो, अब सिर्फ 50 रुपए में वाहताज।
1: गर्ल्स ट्रैक एक्साइटेड?
2: पीरियड्स है, आज ही आना था इसको।
1: ट्रैक लंबा चलेगा निट्स, थक गई तो
2: चढ़ाई तो देख,
1: मतलब फ्लो भी ज्यादा,
2: बार बार पैड भी चेक।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं मौसम के बारे में। वेल, आप लोगों को तो लग ही गया होगा पता कि मौसम जो है वो बहुत ही ट्रिकी है। और ट्रिकी क्यों है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, कहीं बारिश नहीं है, बट कहीं पर है और कहीं पर थोड़ी ज्यादा है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, और ऐसी ही सिचुएशन कुछ हमने भी फेस की है। जी हाँ, तो सबसे पहले 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर आज रहा। वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 21.2 डिग्री सेल्सियस के करीब है, बट फील आपको हो रहा है 18.1 डिग्री सेल्सियस के करीब। इसी के साथ रात के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आप देख पाएंगे तापमान में। 30% चांसेस थे बारिश होने के और 1 mm तक बारिश हो सकती थी जैसे मैंने कहा था। इसी के साथ आज के मौसम की बात हो गई, एयर क्वालिटी की बात की जाए तो वो भी है एकदम फेयर। अब जरा कल की बात करते हैं यानी कि थर्सडे की, जब 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 50% चांसेस हैं बारिश होने के। लेकिन फ्राइडे को एकदम सनी रहने वाला है, नो चांसेस ऑफ बारिश विद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब कल जो है वो मौसम थोड़ा ट्रिकी रह सकता है, जैसे मैंने कहा कि कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है पर कुछ इलाकों में आपको नहीं मिलेगी बारिश देखने को, सूखा सूखा रहेगा और कुछ इलाके भीगे भीगे रह सकते हैं। लेकिन फ्राइडे को बारिश नहीं होगी, मजेदार मौसम रहने वाला है विद 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये है मौसम का हाल। और इसी के साथ चांद को याद कर लिया जाए क्योंकि आई डोंट नो बट चांद के गाने आजकल मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा आजकल थोड़ी, वो तो हमेशा ही प्यारे लगते हैं।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अब आपकी फरमाइशों की बात कर ली जाए, यानी कि अपने फरमाइशी गीत जो आप फरमाइश कर सकते हो हमारे इस प्रोग्राम में. जी हाँ, क्योंकि इवनिंग वाइब है, वन वे ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ हमारी तरफ से ही प्रोग्राम नहीं होता है. हम आपके लिए ही सिर्फ गाने नहीं प्ले करते हैं, बल्कि आप भी अपने पसंदीदा, अपने चुनिंदा गाने फरमाइश कर सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो, और इनफैक्ट किसी को डेडिकेट भी कर सकते हो. सो व्हाट आर यू डूइंग, जल्दी से फोन उठाइए. जी हाँ, जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए. नंबर है +9182888717701. आई रिपीट, +9182888717701. तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश. और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक बहुत ही प्यारी सी धुन आपके लिए.

उसका वेल वेल वेल, ये आपके लिए नहीं है बल्कि आपके एआई के लिए है। जी हाँ, आप लोग बोलो हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सो अपेरेंटली एप्पल जो है वो अपने एयरपोर्ट्स में कैमरा लगाने वाला है, सो दैट आपका जो एआई है, यानी कि एप्पल का जो एआई है सिरी, वो आपकी सराउंडिंग्स को चेक कर सके और उसके हिसाब से आपको हेल्प कर सके। आप लोग बोलोगे कि कैसे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं हम, मतलब हमारा सीरी जो है, अब हमारा एआई जो है, जो कि हमारे फोन में होता था पहले, अब वो हमारे कानों में घुस के आंखों की तरह जो है वो हमारे सराउंडिंग्स को देखकर हमें हेल्प करने की कोशिश करेगा। मतलब हम क्या अंधे बहरे लंगड़े लूले हो गए हैं? क्या चल रहा है? ये एआई हमको ऐसे डम्ब क्यों ट्रीट करता है? देयर आर थिंग्स दैट वी कैन डू, हम खुद से कर सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। वेल, जैसे मैंने कहा कि एप्पल जो है वो अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन अनऑफिशियल, ऑलमोस्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि एप्पल के एयरपोर्ट्स में अब कैमरा लगने वाला है और वो आपके लिए नहीं है बल्कि आपके एआई के लिए। सो आपकी सराउंडिंग्स जो हैं उनको भी आपका एआई देखेगा। वेल, गुड लक विद दैट, क्योंकि मैं तो एयरपोर्ट्स यूज ही नहीं करती हूँ, सो मैं ठीक हूँ इस मामले में। बट व्हाट अबाउट यू? देखिए जरूर यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों शो जो है वो मजेदार चल रहा है, आपकी फरमाइशें आ जाएं तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। जी हाँ, और इसी के साथ टॉक्सिक जो है वो रिलीज होने वाली है। जी हाँ, टॉक्सिक जो है वो इस हफ्ते जो है वो रिलीज होने वाली है, और क्या आप लोग उसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं। जी हाँ, मतलब इस हफ्ते से अगले हफ्ते की बात मैं कर रही हूँ, फ्राइडे की। उस दिन ये रिलीज होगी। एक हीरो यश यानी कि KGF स्टार यश जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी और नायिकाएं आपको उनके साथ देखने को मिलेंगी। फिर चाहे वो ऑफकोर्स तारा सुतारिया हो, फिर चाहे वो कियारा आडवाणी हो, फिर चाहे साउथ की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हो, नयनतारा से लेके और भी खूबसूरत एक्ट्रेसेस आपको इसमें नजर आएंगी। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो जरा देख के देखिएगा, क्योंकि आपको पहले ही ऐसा लग सकता है कि ओ क्या आप किसी इंडियन मूवी को ही देख रहे हो। मतलब एकदम खतरनाक और हार्ड हिटिंग ट्रेलर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या टॉक्सिक नाम आपको पसंद आया। मतलब एक चीज है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा के लोगों को, जो सिनेमा बनाते हैं, उनको ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और वो ये है कि सिनेमा लोग एंटरटेन होने के लिए देखते हैं। जी हाँ, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, उनको टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए होती है, उनको अपने हाथ को जो है अपने हार्ट को रेंच नहीं करवाना होता है, उनको मजे करने जाना होता है सिनेमा देखने। कोई फिल्म जो है वो मजे करने के लिए देखता है, राइट। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग, और कभी कभी सीरियस तरीके से स्टोरी टेलिंग ही होती है, बट फिर भी एक सिनेमा को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि एंटरटेनमेंट जो है वो होना चाहिए, और मूवी जो है वो एंटरटेनिंग होनी चाहिए।

आपको लगता है क्या ही देख लिया. एंड आई थिंक दिस इज हाई टाइम सिनेमा जो बनाते हैं लोग, उनको ये चीज समझ जानी चाहिए कि लोगों को एंटरटेन होना है, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, लोगों को खुश होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट सिनेमा इज ऑल अबाउट. लेकिन जिस मूवी का नाम ही टॉक्सिक है वो क्या खुश करेगी हमें? वेल वी डोंट नो, बट ठीक है, लेट्स सी. और अगर आपने ट्रेलर देख लिया है KGF का नहीं बट टॉक्सिक का, तो जरूर मुझे बताइएगा. और इसी के साथ कि आपने यश की KGF देखी है? वेल नहीं देखी है तो KGF 1 और 2 OTT प्लेटफॉर्म्स पर है, जरूर देखिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी.

जी दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको भी कोका कोला यानी कि कोक पीना बहुत ज्यादा पसंद है तो आपके लिए ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं अब बताने वाली हूँ। जी हाँ, सो वन कैन ऑफ कोक कुड कॉस्ट यू 12 मिनट्स ऑफ हेल्दी लाइफ, और ये स्टडीज ने प्रूव कर दिया है। जी हाँ, सो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक स्टडी हुई है जिसमें एस्टिमेटेड जो है वो पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फूड एंड हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज को जो है वो टेस्ट किया गया है, और उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि वन कैन ऑफ कोक कुड कॉस्ट यू 12 मिनट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब कोका कोला पीना बहुत लोग पसंद करते हैं। आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट, लिटरली आई एम नॉट। एंड कुछ वक्त पहले हम कोक की बात भी कर रहे थे कि कैसे कोका कोला के लिए लोग जो है वो बहुत ज्यादा क्रेजी, एंड दैट इज द रीजन कि आज भी इसका जो बहुत ही अलग सा टेस्ट है उसको लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा इसे कंज्यूम करते हैं, और आज भी इसका फ्लेवर जो है वो हमेशा की तरह यूनिक बना हुआ है, कोई इसको कॉपी नहीं कर पाया है। बट ट्रुथ तो यही है और सच तो यही है कि ये चीज आपकी बॉडी को हार्म करती है। जैसे मैंने कहा कि 12 मिनट ऑफ हेल्दी लाइफ या ये आप खो सकते हैं एक कैन ऑफ कोक से, और ये सिर्फ एक कैन ऑफ कोक की बात हो रही है। मतलब इंसान के पास कितने मिनट होते हैं, कितने 12 मिनट, अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने अभी तक अपनी लाइफ में कितने कैन ऑफ कोक जो है वो कंज्यूम किए हैं और उसका क्या असर हमारी बॉडी पर जो है वो पड़ सकता है। जी हाँ, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सम पॉपुलर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है वो आपकी लाइफ को छोटा भी करते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि हम लोग अपनी जीभ के स्लेव हैं, मतलब हम अपनी टंग के स्लेव हैं। हमें स्वाद और टेस्टी चीजें खाने की इतनी ज्यादा आदत है कि हम ये भी नहीं सोच पाते कि क्या वो चीज हमें हार्म कर रही है, नहीं। और इनफैक्ट अगर आप कोक की बात करें तो कोक में लिटरली शुगर होती है, और अगर आप जीरो शुगर कोक भी पीते हैं, कोक भी पीते हैं, तो उसके बाद भी वो आपको हार्म करती है, बॉडी को हार्म करती है। सो अगर आप लोग भी फैन हो कोक के तो बच जाइए और कुछ और हेल्दी जो है उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लीजिए, क्योंकि हर एक कैन ऑफ कोक 12 मिनट आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल से, हेल्दी लाइफ से जो है वो लेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। जी हाँ, और ये मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीडा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं खबरों की। आई नो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारी गपशप भी बाकी है, लेकिन वक्त तो हो गया है खबरों की तरफ रुख करने का, क्योंकि आप देख सकते हैं घड़ी ने इशारा कर दिया है, और घड़ी अगर इशारा करती है तो हम उस इशारे को समझने में सबसे आगे हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले खबरों में आपको बताइए, बहुत कुछ चल रहा है, फिर चाहे वो दुनिया भर की बात हो, यानी कि वॉर फ्रंट की बात हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई नया कारनामा कर रहे हो। जी हाँ, बेसिकली बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत हम करने वाले हैं, जी हाँ, पश्चिम बंगाल से, भारत की खबर। पश्चिम बंगाल, कोलकाता के एक होटल में भीषण आग, 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके के एक होटल में मंगलवार देर रात आग लगने के कारण एक बच्चे समेत कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि इन लोगों की मौत कम दम घुटने के कारण हुई है। फिलहाल 6 अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। उनको सरकारी SKM मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी AANIA ने फायर ब्रिगेड सूत्रों के हवाले से बताया है कि मृतकों में बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। वो इलाज के लिए वहां आए थे, लेकिन पुलिस ने अब तक मृतकों की पहचान की पुष्टि नहीं की है। फायर ब्रिगेड सूत्रों ने बताया कि रात को लगभग 2 बजे होटल की तीसरी मंजिल पर आग लगी। उसका धुआं पूरी इमारत में भरने लगा। धीरे धीरे आसपास की इमारतों तक ये आग जो है वो फैल गई, और वहां फायर ब्रिगेड का दफ्तर बगल में ही था। फिर भी उस आग पर जल्दी काबू नहीं पाया जा पाया।

अरे अरे अरे, डोंट वरी डोंट वरी, वो आप जाने वाले हो किससे डिस्को में आप जाने वाले हो, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम खबरों की बात कर रहे हैं तो एक और चीज जो कि खबर आई है फ्रांस से। जी हाँ, फ्रांस ने दो ईरानी राजनयिकों को देश से निकलने का फैसला क्यों किया, देश से निकालने का फैसला क्यों किया। जी हाँ, सो फ्रांस ने दो ईरानी राजनयिकों को देश से निष्कासित करने का फैसला किया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। बीबीसी फारसी के मुताबिक इससे पहले ईरान ने फ्रांसीसी दूतावास के दो कर्मचारियों को वापस ईरान आने से रोक दिया था। ईरानी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि जुलाई में हुए एक राजनयिक विवाद के बाद इन दोनों कर्मचारियों को ईरान लौटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 20 जुलाई को फ्रांस के विदेश मंत्री ने ईरानी सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया कि इन्होंने दूतावास के दो कर्मचारियों को डराया धमकाया था। दूसरी ओर ईरान ने फ्रांस पर ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और प्रभाव डालने का आरोप भी यहां पर लगाया था।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प बात आज हमारे घर पर हो रही थी और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वो बात थी रक्षाबंधन को लेकर, यानी कि राखी, यानी कि रक्षाबंधन जो है वो आने वाला है। और अगर आप भी इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हो, जो कि लिटरली भाई और बहन का त्योहार है, उनके प्यार का त्योहार है, उनके रक्षा के यानी कि सेफ्टी के उस प्रॉमिस का त्योहार है, जो कि लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाते हैं, खासकर भाई बहन, जैसे मैंने कहा, तो वही हमारी बात हो रही थी। मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ था और मैं इसे कह रही थी कि मुझे इस बार तो क्या देगा भाई। जी हाँ, तो मेरा भाई मुझे देख के कहता है कि ओके ओके ओके, देख बहन, मैं तुझे प्रॉमिस दूंगा कि मैं तुझे लैम्बोर्गिनी जो है वो दूंगा। मैंने कहा ओके, प्रॉमिस दूंगा, लैम्बोर्गिनी दूंगा, मतलब मुझे समझ नहीं आया, या तो लैम्बोर्गिनी मिलेगी, या तो प्रॉमिस मिलेगा, या तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये क्या चल रहा है। तो मेरा भाई लिटरली मेरा मजाक उड़ाने के चक्कर में, मुझे वहां पे छेड़ने के चक्कर में मुझे कहता है कि तेको पता है, मैं तुझे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुझे लैम्बोर्गिनी लेकर दूंगा। तो मुझे पता चल गया कि मुझे रक्षाबंधन पे मेरा भाई कुछ नहीं दे रहा सिवाय एक प्रॉमिस के। लेकिन क्या ये चीज सही है? क्या मुझे मटेरियलिस्टिक होना चाहिए? वेल ऑफ कोर्स आई हैव टू बी मटेरियलिस्टिक। जी हाँ, मतलब कब आपको अपने भाई बहनों को लूटने का मौका मिलता है, खासकर भाइयों को? सो मैं कहती हूं कि अपने भाई को जरूर लूटिएगा, एंड व्हेन आई से लूटिएगा, प्यार से लूटिएगा। जी हाँ, और अगर वो आपको गिफ्ट नहीं देंगे, खुद गिफ्ट दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निकलवाने की अगर जरूरत पड़ जाएगी तो निकलवा भी लीजिएगा, क्योंकि राखी है भाई, रक्षाबंधन पे अपने भाई को नहीं लूटा तो कब लूटा, राइट? लेकिन आपको भी प्यारा सा गिफ्ट अपने भाई को देना पड़ेगा। सो राखी आने वाली है और मैं सोच रही थी कि आपको याद करवा दूं। और अगर आपका भाई भी आपको प्रॉमिस देने वाला है किसी फ्यूचरिस्टिक चीज का, तो उसको बोलना कि अपना प्रॉमिस अपनी झोली में डाल के वहीं से जाए। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ एक और चीज जो कल ही मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और मुझे देखने को मिलती है, मुझे पढ़ने को मिलती है और मुझे समझने को मिलती है, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहिए, और खासकर उन लिसनर्स के साथ जो कि 90s किड हैं। जी हाँ, मतलब जो 90s में पैदा हुए हैं उनके लिए तो ये डेफिनेटली है। जी हाँ, तो उसमें लिखा हुआ था कि डियर 90s किड्स, व्हेनेवर यू फील स्टूपिड जस्ट रिमेंबर वी कंप्लीटेड आवर डिग्रीज विदाउट ChatGPT। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, वी कंप्लीटेड आर डिग्रीज विदाउट ChatGPT, वी सर्वाइव्ड गूगल पेज 17, कॉपीड असाइनमेंट्स फ्रॉम बुक्स, गेस्ड हाफ ऑफ द एग्जाम्स आंसर्स एंड समहाउ ग्रेजुएटेड एनीवे। जी हाँ, वी वरंट स्मार्ट बट वी वर प्रोफेशनली कमिटेड टू सर्वाइविंग। जी हाँ, मतलब वी वरंट स्मार्ट बट वी वर प्रोफेशनली कमिटेड टू सर्वाइविंग, और हमने सर्वाइव नहीं थ्राइव किया है। जी हाँ, सो आगे से जब भी कोई जेंजी आपको ऐसा फील करवाए कि ओ यू आर सो स्टूपिड, अरे आपको ये नहीं पता, अरे हमें सब पता है, हमने ChatGPT के बिना पढ़ाई की है, ठीक है, तो तुम मुझे सब मत समझाओ, या आप हमें मत समझाओ या बताओ कि कैसे पढ़ाई करते हैं या कैसे काम करते हैं, हमने विदाउट AI के अपने जिंदगी को जिया है और बहुत अच्छे से जिया है। ये जेंजी लोग अपने आप को समझते पता नहीं क्या है। जी हाँ, सो अगेन जैसे मैंने कहा कि ये जो 90s किड्स हैं, जो कि बहुत सारे अनमैरिड हैं बाय द वे, क्योंकि सबसे ज्यादा 90s किड्स ही हैं जो इस वक्त मार्केट में अनमैरिड बैठे हुए हैं, एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट, दे आर नॉट इवन रिग्रेटिंग इट एट ऑल। जी हाँ, सो यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मुझे मेरी तरफ से।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hu unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
2: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
1: Acha? वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
4: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। एंड इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि हमने अभी तक ओल्ड इज गोल्ड शुरू क्यों नहीं किया है, मतलब क्या हम उस सेगमेंट को आज नहीं जो है वो आपके लिए लेकर आने वाले हैं, वेल ऑफकोर्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, लेकिन वो सेगमेंट अभी आपको 15 मिनट बाद मिलने वाला है, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम जो है वो आधा घंटा लेट खत्म होगा। यानी कि जैसे हमारा प्रोग्राम हमेशा 6 बजे खत्म हो जाता है, आज हमारा प्रोग्राम जो है वो 6:30 खत्म होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो 3:30 बजे शुरू हुआ था, 3 बजे नहीं हुआ था, और उसके पीछे भी रीजन थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो 3:30 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, तो ऑफकोर्स उसकी भरपाई हम कर रहे हैं और आपके लिए 6:30 बजे तक प्रोग्राम जो है हम लाने वाले हैं। सो अभी 15 मिनट में ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट आ जाएगा, आप अपनी फरमाइशों के साथ रेडी हो जाइए, क्योंकि आपका सेगमेंट कहीं नहीं जा रहा है, वो आएगा बस अभी 15 मिनट में आने वाला है। जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों एक और बहुत ही दिलचस्प वीडियो जो है वो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये दिलचस्प वीडियो इतनी ज्यादा दिलचस्प है कि आपको लगेगा वाओ, लाइक वाओ। जी हाँ, सो कैलिफोर्निया के एक होम ओनर ने अपनी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डाली, और उसके बाद ये इतनी ज्यादा वायरल होगी कि मीडिया टेबलॉइड्स ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। जी हाँ, सो कैलिफोर्निया होम ओनर जो कि लिटरली अपने घर में बैठ के चिल कर रहा था, इतनी गर्मी में घर पे बैठ के ही चिल हो सकता है, बाहर जाने की हिम्मत इतनी धूप में कोई नहीं कर सकता, प्लस कैलिफोर्निया का जो वेदर होता है वो वैसे भी अच्छा वेदर है, और ऐसे में जब गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी और ज्यादा वहां पर बढ़ गई है, वहां ठंड वैसे भी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जो वीडियो वहां से वायरल हुआ वो ये था कि वो बंदा अपने घर पे बैठा हुआ था आराम से, और फिर वो देखता है अपने दरवाजे के बाहर जो स्विमिंग पूल है उनका, उसमें एक बियर यानी कि भालू चिल कर रहा है। जी हाँ, एक वाइल्ड बियर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई पेट उसने रखा हुआ है या कोई ऐसी वाली सिचुएशन है, नो, इट वाज अ वाइल्ड बियर जो कि उसके घर के स्विमिंग पूल में आके बड़े ही मजे से तैराकी कर रहा है। अब बड़े ही मजे से जो है वो तैर रहा है, चिल कर रहा है। ऑफ कोर्स उसके पास ड्रिंक्स नहीं थी, तो नहीं तो वो भी इंजॉय कर लेता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बेचारे भालू लोग ये सोच रहे हैं कि कौन जाएगा नदी के ढूंढने, इतनी गर्मी हो रही है, किसी का घर मिलता है और किसी के घर का स्विमिंग पूल मिलता है तो उसी में नहा लेगा अपन उसी में नहा लेगा। And that's what he did. वो बेचारा बंदा जो है वो अंदर से बैठ के देख रहा है कि ओह माय गॉड, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे घर के पूल को कौन हाईजैक करने वाला है, एक भालू। जी हाँ, अब वो बंदे की हिम्मत ना पड़ रही बाहर जाने की और ना उससे अंदर रहा जा रहा। तो वो क्या करता, उसने अपना फोन उठाया और वीडियो बना लिया और वो वीडियो ने उसे लिटरली सेलिब्रिटी बना दिया। आई मीन बंदे को नहीं, भालू को। जी हाँ, क्योंकि वो भालू की वीडियो है और वो भालू बहुत ही मजे से चिल कर रहा है। और फिर वो चिल करता रहता है थोड़ी देर, फिर उसे लगता है कि ओके, अब मेरी बॉडी जो है वो थोड़ी कूल डाउन हो गई है, तो अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ, कल फिर से वापस आऊंगा डूड, ठीक है। तो अपने घर के स्विमिंग पूल को ऐसे ही चकाचक साफ रखना। जी हाँ, आई मीन उस भालू के दिमाग में यही चल रहा होगा, राइट। सो अगेन, ये बढ़ती गर्मी जो है, खासकर मतलब ऑफकोर्स हमारे यहाँ तो ठंड है, लेकिन जो गर्मी यूरोप फील कर रहा है, अमेरिका फील कर रहा है और बहुत सारी और कंट्रीज फील कर रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, वो बेचारे लोग भी परेशान है और वहां रह रहे जानवर भी परेशान है। अब ऐसे में भालू तो नदी किनारे जाने से तो नहीं, मतलब उनका काम चलेगा, उनको लगेगा कि इतनी दूर कौन जाएगा, वहां जाते जाते ही गला सूख जाएगा। तो ऐसे में किसी के घर का पूल मिल जाए तो उसी में नहा लो, उसी में डिप लगा लो। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम वक्त हो गया है आपके फेवरेट सेगमेंट में जाने का, विच इज ओल्ड इज गोल्ड। आप लोगों को नहीं पता चला जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला, तो मैं फिर से बोलने वाली हूँ कि आज हमारा प्रोग्राम जो है वो आधा घंटा लेट खत्म होने वाला है, जो कि हमारे अलार्म को भी नहीं पता है। एग्जैक्टली। सो हमारा प्रोग्राम जो है वो आधा घंटा लेट शुरू हुआ था, मतलब हाफ एन आवर लेट हमने अपने प्रोग्राम को शुरू किया था किन्हीं वजहों की वजह से। अब ऐसे में हम इसे आधा घंटा लेट खत्म करने वाले हैं, एंड हेंस ये जो सेगमेंट है वो चला गया है 6 बजे के करीब, यानी कि 6 PM पे अब हमारा ये सेगमेंट शुरू हो रहा है, जो कि 6:30 हमारे प्रोग्राम के खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा। सो जो गाना मैं अपने इस सेगमेंट में प्ले करने वाली हूँ वो बहुत ही खास है, इट्स अ कल्ट फेवरेट सॉन्ग, ये दिल तुम बिन लगता नहीं, मैं क्या करें हम क्या करें। जी हाँ, सो ये गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, और ये खूबसूरत सा गाना सुनते सुनते आपको अपनी फरमाइशें भी रेडी रखनी है, खासकर ओल्ड इज गोल्ड शुरू हो गया है तो मतलब आपको पुराने गानों से रिलेटेड अपनी फरमाइश हमें भेजनी है। जल्दी से भेज दीजिए और यहां पर सुनते हैं इस गाने को।

जी दोस्तों, इसी के साथ ये खूबसूरत सा सेगमेंट शुरू हो गया है। ये क्लासिक कल्ट फेवरेट सॉन्ग भी आपने सुना और इससे अच्छी शुरुआत और क्या ही हो सकती है, राइट? लेकिन अब मैं एक फरमाइशी गीत प्ले करने वाली हूँ और एग्जैक्टली फरमाइशी गीत हम इसे नहीं कहेंगे क्योंकि मुझे कहा गया है कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी गाना प्ले कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको सिचुएशन यहाँ पर बताऊंगी जो कि बहुत ही फनी है, थोड़ी सी क्यूट भी है, थोड़ी सी गलती वाली भी है, लेकिन हम माफ कर देना चाहते हैं इस गलती को। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि नीवा शर्मा तुम कौन होती हो माफ करने वाली। वेल अच्छा ठीक है, जो लोग इंक्लूडेड हैं इसमें, इन्वॉल्व्ड हैं, उनको माफ कर देना चाहिए और सबको माफी का हक होता है। जी हाँ क्यों मैं ये कह रही हूँ, वेल अभी कुछ देर पहले की बात है, मुझे मेरी बहुत ही क्यूट लिसनर विनी जी का मैसेज आता है और उन्होंने एक वीडियो मुझे जो है वो भेजी है जहां पर लिटरली उनके हस्बैंड क्रिस जी ये बोल रहे हैं कि पता नहीं कौन आके ड्राइव करके गया है यहां पर मेरे गार्डन में और ये बेचारा सा छोटा सा प्लांट जो है वो लिटरली उसकी वजह से टूट गया। लिटरली वो प्लांट जो है वो अब गड़बड़ हो गई है उसकी सिचुएशन। और ऑफ कोर्स ही वॉज काइंड ऑफ एंग्री लग रहा था वीडियो से, बट एग्जैक्टली एंग्री नहीं थे, लेकिन तब तक उन्हें पता नहीं था कि ये किसने किया है। फिर जब उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ यानी कि विनी जी ने ही ये किया है, तो उसके बाद विनी जी ने कहा है कि ठीक है अब हो गया है ये, तो अब कोई माफी वाला गीत जो है वो प्ले कर दिया जाए। बट यहां पर मैं कह रही हूं कि माफी वाला गीत नहीं प्ले होना चाहिए क्योंकि वो वीडियो जो है वो ऑफकोर्स वो प्लांट जो है वो हर्ट हो गया, वो तो एक चीज है, वो नहीं होना चाहिए था। बट क्योंकि इससे एक ह्यूमर जो है वो निकल कर आता है कि इतनी खतरनाक ड्राइविंग स्किल्स हैं विनी जी आपकी कि आप बाकमाल। जी हाँ, सो आप ही के लिए हम यहां पर ये गाना जो है वो प्ले करने वाले हैं। एंड यू नो व्हाट, आई लव इट जब मेरे लिसनर्स जो है मुझे अपने ये प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट और कभी कभार तो थोड़े खतरनाक मोमेंट्स में भी जो है वो इंक्लूड करते हैं और मुझे बताते हैं और हमारे साथ शेयर करते हैं। सो आई लव इट, थैंक यू सो मच विनी जी ये प्यारी सी गुफ्तगू शेयर करने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स क्रिस जी को थोड़ा सा जो है बुरा लग रहा है प्लांट के लिए और अगेन एक और प्लांट लाया जाएगा और वहां पर लगाया जाएगा तभी अच्छी बात होगी, लेकिन यहां पर आपकी ड्राइविंग के लिए हम आपके लिए एक गाना प्ले करने वाले हैं। एंड क्रिस जी मैं यही कहूंगी कि आप थोड़ा माफ कर दीजिए इनको, हो जाएगा, हो गलती हो जाती है, इंसान है, गलती हो जाती है। जी हाँ, और जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ विनी जी आपके लिए वो है ये। जी हाँ, स्पेशली आपकी ड्राइविंग के लिए।

जी हाँ दोस्तों, तो ये जबरदस्त सा गाना आपने सुना जो कि फरमाइशी गीत था, बट फरमाइशी गीत नहीं था, हमारी तरफ से प्ले किया गया, सिचुएशन के हिसाब से प्ले हुआ। एंड अगेन मैं कहना चाहूंगी, बड़ी ही प्यारी सी बात थी और यहाँ पर बड़े ही प्यारा सा ह्यूमर इसमें से निकल कर आया है। सो अगेन एक और चीज मैं कहना चाहूंगी जो कि विनी जी ने कही है क्रिश जी आपके लिए, कि देखिए गलती तो हो ही जाती है नशे में, लेकिन वो नशा वो वाला नशा नहीं था, प्यार का नशा था। अब आपके प्यार के नशे में ही उन्होंने वो गड़बड़ की है, लेकिन आपको पता ही है सारी गड़बड़ सॉल्व की जा सकती है और प्यार बना रहना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने मेरा नाम जोकर देखी है या नहीं देखी है। जी हाँ, मेरा नाम जोकर में आपने मनोज कुमार के कैरेक्टर को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मनोज कुमार जब मेरा नाम जोकर बन रही थी उसके लिए जब ये रोल ऑफर किया गया था मनोज कुमार को, तो वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर जो है वो बन चुके थे, और ना सिर्फ एक्टर बल्कि डायरेक्टर भी वो एक एस्टेब्लिश्ड बन चुके थे। अब ऐसे में उन्होंने फिर भी वो छोटा सा रोल एक्सेप्ट किया, उसके पीछे रीजन यही था कि वो राज कपूर की फिल्म मेकिंग के बहुत बड़े फैन थे। जी हाँ, वो राज कपूर के बड़े फैन थे, एंड दैट वॉज द रीजन कि उन्होंने वो छोटा सा रोल भी करने के लिए हाँ कर दी। ऑल्दो इतने छोटे छोटे रोल कोई भी बड़ा एक्टर जो है वो उस वक्त किया नहीं करता था, क्योंकि उनको लगता था कि वो जिस भी मूवी में आएंगे उसमें सेंटर कैरेक्टर प्ले करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। लेकिन मनोज कुमार ने वो किया जस्ट बिकॉज राज कपूर वो मूवी बना रहे थे और वो मूवी का स्केल बहुत बड़ा था। जी हाँ, इतना बड़ा कि राज कपूर और लिटरली आरके स्टूडियोज जो है वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गया था, और अगर वो मूवी नहीं चलती तो उनका घर तक बिक जाता, इतने पैसे उस मूवी में राज कपूर ने लगाए थे। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

भाई बात तो पक्की है, इशारों इशारों में दिल लेने वालों, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। अब ये गाना जितना खूबसूरत है, ये मूवी जो है वो भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक है और तूफानी है। जी हाँ, मतलब गाने जो हैं वो आशा जी के गाए हुए हैं और आशा जी और रफी साहब ने वन ऑफ द बेस्ट ड्यूएट्स किए हैं उस वक्त के। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब शर्मिला टैगोर से पूछा गया कि आप जब कश्मीर की कली शूट कर रहे थे शमी कपूर साहब के साथ, तो आपको कैसा लग रहा था, मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, तो शर्मिला टैगोर बिचारी सर पे हाथ रखकर कहती हैं कि ओह क्या बताऊं मैं आपको। जी हाँ, वो कहती हैं कि मैं एकदम नई नई थी, वो मेरी पहली मूवी थी और मेरा डेब्यू हो रहा था हिंदी सिनेमा में, और ऐसे में मैं पहले से ही नर्वस थी और मैं पूरी तरह से अपने डायलॉग्स को रिहर्सल करके जा रही थी ताकि शूटिंग करते वक्त जो है मैं कोई भी गड़बड़ ना करूं, क्योंकि मेरे सामने लेजेंडरी शमी कपूर थे और मैं वहां पर नई थी। लेकिन जब भी हमारा शूट शुरू होता, हमारा कोई सीन शुरू होता, तो जो प्रैक्टिस हुई थी, जो वहां पर लिखा होता था, उससे डायलॉग जो है वो डिफरेंट हो जाता था। मतलब इम्प्रोवाइज जो है वो शमी कपूर कर देते थे। अब अगर आप उनको कोई कोरियोग्राफी सिखाओगे तो वो कोरियोग्राफी जो है वो अपनी डिफरेंट कर देंगे, वो अपनी अदाओं से डायलॉग्स को चेंज कर देंगे, और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अब क्या करूं। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा तो था, पर बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि एज अ न्यू कमर मुझे समझ ही नहीं आता था कि अब ये इंसान क्या करने वाला है। बात तो सही है, शमी कपूर साहब की अदाएं अगर कोई पहचान पाया तो फिर तो वो बाकमाल नहीं हुआ। जी हाँ, यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से नहीं है बल्कि एक फरमाइशी गीत है, और ये फरमाइशी गीत आया है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर प्रेमा आंटी जी की तरफ से। बहुत ही खूबसूरत गाना है, गाने का नाम है तड़पाओगे तड़पा लो। जी हाँ, ऑल्दो मैं इसके लिरिक्स से अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि एज अ फेमिनिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि क्यों भाई, मुझे कोई तड़पा रहा है तो फिर मैं क्यों तड़पूं, और क्यों तड़पाओगे आप, बता देंगे इसके अगर हम उसे रोमांटिक वे में लेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ यार, अगर किसी से प्यार है तो थोड़ा बहुत वो तड़पा भी रहा है तो क्या ही हो जाएगा, राइट। बता देंगे इसके थोड़ा बहुत और ज्यादा में फर्क होता है, तो वो लिमिट जो है और वो लाइन जो है वो आपको हमेशा याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, फिर चाहे आप किसी से प्यार ही क्यों ना करते हो, कोई आपको परेशान कर रहा है और कोई आपको अच्छा फील नहीं करवा रहा है, तो दैट इज द बॉर्डर लाइन, दैट्स इट। ऑल्दो ये गाना जो है इट्स ऑल फन एंड गेम्स। जी हाँ, थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी हमेशा की तरह खूबसूरत गानों के लिए, और ये गाना जो है वो जबरदस्त है, और ये इंस्टाग्राम का बहुत ही वायरल सॉन्ग भी है, इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ ये कुछ वक्त से। सो ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए आज के इस प्रोग्राम का।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।
1: आंखें खुली हो या हो।

ना बदला मैं, ना बदला

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चार दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल की मेजबानी करेगा रशिया। मॉस्को के गोस्तिनी द्वेर में 20 से 23 अगस्त तक इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये भारतीय और रशियन कम्युनिटी को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंध का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में कई जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। लगभग 20 विशेष जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियों, डांस और आयुर्वेद को जानने का मौका मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कमजोर हो रही ईरान की पकड़। अमेरिका और ईरान के बीच बीते 5 महीनों से ज्यादा समय से जारी संघर्ष, विफल शांति वार्ता और नाक की लड़ाई की भेंट चढ़ता आया है। दूसरी तरफ इस बात में भी कोई दोराय नहीं है कि इस संघर्ष का सबसे ज्यादा असर दुनिया के सबसे संवेदनशील और अहम जलमार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर देखने को मिला। अब समझ में आने लगा है कि होर्मुज पर ईरान की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। भारत वंशी पिया डांडिया ने अमेरिका में गाढ़ा झंडा, फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक का प्राइमरी चुनाव जीता। भारतीय अमेरिकी पिया डांडिया ने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव जीत लिया है। अब नवंबर में होने वाले चुनाव में उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के केसी अस्कर से होगा, जो एक अनुभवी मरीन है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। तारिक रहमान करेंगे भारत का दौरा, भारतीय उच्चायुक्त ने दिया पीएम मोदी का संदेश। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा यादगार हो। नई दिल्ली और ढाका के बीच रिश्तों में आई नई खटास के कारण इस यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेशी बिजनेस लीडर्स और भारत के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के डेलीगेशन के लिए एक रिसेप्शन रखा था। इसमें बोलते हुए त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी ने दोनों नेताओं से मुलाकात की जरूरत पर जोर दिया और रहमान को भरोसा दिलाया कि उनका शानदार स्वागत किया जाए। आइए जुड़ते हैं अब खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। श्रीलंका के खिलाफ गोल में बचा भारत का डंका। मानव सुधार के 10 विकेट और देवदत्त पडिक्कल के शतक के दम पर टीम इंडिया ने श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में हरा दिया है। भारत ने मुकाबले में 165 रनों से जीत हासिल की। जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है। भारत की इस जीत में सुथार और पडिक्कल ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन इन दोनों के अलावा भी कुछ और खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया जिससे भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित हो सकी। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: शादी ना बना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।

0: Husky Rai.
1: Pelle Husky Rai.
2: जी हाँ दोस्तों, लगता है कि शुरू शुरू में सब प्रॉमिस हो जाया करता है, फिर बाद में आई डोंट नो ये सब प्रॉमिस रखा जाता कि नहीं रखा जाता. मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया था, मैंने तो कभी कुछ ऐसा प्रॉमिस वोमिस नहीं किया था.
3: नो
2: ना ना ना ना, बट देन अगेन प्रॉमिस इज अबाउट टू बी ब्रोकन, इज इट?
3: यस.
2: ओके,
3: आई गेस. देखिए दोस्तों, लॉट्स ऑफ पीपल ब्रेक देयर प्रॉमिसेस, दे फॉरगेट.
2: अच्छा देखो, थोड़ा कुछ ऐसे बातें कर ले. कहते हैं कि जिंदगी को सालों में मत गिनो, उन लम्हों में गिनो जिनमें आपने दिल से जिए हैं. ठीक है, दिल से जिया, हंसा और किसी को खुश किया. ठीक है, तो बिकॉज जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, बिफोर यू नो. और एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट आया था कल लेकिन हम बजा रहे हैं आज. थैंक यू प्रेम जी फॉर द रिक्वेस्ट.
4: ए भाई दर्द

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है, घोड़ा जो पैसा है, घोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: देखिए दोस्तों, इस जो गीत को मना डेने गाया था, ये भाई जरा देख के चलो फिल्म मेरा नाम जोकर, इट वाज अ 1970 मूवी. आई थॉट इट वाज लॉन्गर देन दैट, बट नो, इट्स 1970.
1: ओनली 1970.
0: या या या,
1: इट फील्स ओल्ड बट इट्स सच अ गुड मूवी.
0: ये एक बहुत मशहूर गाना था दोस्तों ये, और इसे मना डे ने गाया था. म्यूजिक शंकर जय किशन का था और लिरिक्स नीरज ने लिखे थे. जी हाँ. और देखिए, इस जो गाने का जो मैसेज लाइफ के बारे में है दोस्तों, कि जिंदगी में आगे बढ़ो लेकिन संभल कर, सिर्फ सामने ही नहीं अपने आसपास भी देखो, क्योंकि जिंदगी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता है. ठीक है, तो ऊपर भी नहीं नीचे भी. अगर आप नीचे देखकर चलोगे दोस्तों तो पैसा मिलेगा. मुझे आज मिला कुछ 20 सेंट. सच कहता हूँ. और ऐसे होता है दोस्तों. जी हाँ. तो चलिए, उम्मीद है गाना आपको अच्छा लगा होगा. बहुत बहुत बढ़िया गाना था. थैंक यू प्रेम जी फॉर लवली सॉन्ग. ओके, व्हाट वी प्लेइंग नेक्स्ट?
1: वेल, आई एम जस्ट वंडरिंग, 728.
0: ओके, लेट्स डू इट.
1: शुड वी? ओके, सो इफ इट्स टुडे इज द 20th ऑफ ऑगस्ट, सो हैप्पी बर्थडे इफ यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे.
0: या,
1: एंड अ हैप्पी एनिवर्सरी इफ यू सेलिब्रेटिंग एन एनिवर्सरी. वी होप यू हैव एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल डे. And today is also Daffodil Day, so if you can make a donation towards cancer, please. If you can wear yellow, buy a daffodil, that'll be great.
0: Nothing yellow on me today. Oh, usually yellow is my favorite color, you know that?
1: Usually I wear yellow on Thursdays.
0: Yeah, you'll be funny, people will be saying, it's yellow color, it's your favorite, right?
1: No, yellow is a beautiful color. I love yellow.
0: It's like, to me, it's like purity. It's like
1: sunshine to me.
0: Yeah, it's just. Yeah, I don't know. Okay.
1: Well, anyway.
0: All right. Things we come up with.
1: I know.
0: Chalo, sunte lage.

0: कुछ लोग जाग रहे हैं, मैंने नोटिस किया, अब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। हाँ, अपने आंख मीच बीच कर निकल गए हैं और सुन रहे हैं। हाँ, देखिए, मिडल ईस्ट का जो टेंशन रिमेन्स हाई अराउंड ईरान एंड द गल्फ, रिपोर्ट्स दैट ऑयल प्राइसेस हैव क्लाइम्ड अमिड रिन्यूड अनसर्टेनिटी
1: Uncertainty.
0: Yeah, while the UAE had one extra titty. Improved a financial embargo on Iran following missile threats.

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: अच्छे दोस्तों, ये जो मैं जानना चाहता हूं कि आप गेस कर सकते हो, ये जो गाना, आई एम श्योर यू बी एबल टू गेस, ये मोहब्बत की उस रंग की बात करता है जो एक बार दिल पर चढ़ जाए तो फिर पूरी जिंदगी रंगीन लगने लगती है। बताओ कौन सा गीत है, आप बता पाओगे? अच्छा, यू माइट बी एबल टू टेल बिकॉज यू कैन सी।
1: No, I'm not going to guess.
0: No, I know,
1: because I won't be guessing.
0: I know you won't be
1: I'll
0: guessing.
1: I'll be cheating.
0: I know.
1: And I do
0: know.
1: Not like just, a cheater.
0: No, yeah, yeah. Right, yeah. So. Okay. I never cheated your songs.
1: Oh, yeah.
0: Never look at your song. But maybe you guys might be able to know. It's a beautiful song, right?
1: Yep.
0: और ये जो गाना है, चलो मैं और एक हिंट दे देता हूँ। ये फिल्म प्रेम पुजारी का है, 1970 मूवी प्रेम पुजारी का। खूबसूरत गाना है दोस्तों। इसे लता मंगेशकर ने गाया और म्यूजिक दिया था एस डी बर्मन ना, उसका म्यूजिक था और लिरिक्स नीरज। तो कौन सा गीत है? इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई मीन फॉर मी इट इज ब्यूटीफुल। आई होप यू ऑल विल लाइक इट टू। ओके,

0: Wow, what a song.
1: Mm.
0: It's a very difficult song, I'm pretty sure, to sing, you know?
1: Yeah.
0: Yeah, बहुत अच्छा लगा. लेकिन अब अगला जो गीत है उन लोगों के लिए जो बाग में अपना कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है?
1: Mm.

0: जी हाँ दोस्तों, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया ना करो। एक रोमांटिक ड्यूट था, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया था, म्यूजिक उषा खन्ना का, और लिरिक्स को लिखा था कौन, राजेंद्र किशन ने। जी हाँ दोस्तों, पुराने गानों में जो ये फ्लेटिंग भी ना कितनी मासूम होती थी। खूबसूरत होती थी दोस्तों, है कि नहीं? तुम अकेले तो कभी बाग में जाया ना करो। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, चोट चपेट लग तक सकता है, कहीं भौरा काट ले आपको, या ये सब बहुत हो सकता है। तो यू नो, बी केयरफुल। पहले जमाने में तो पूरा बड़ा बड़ा खेत कमाया जाता था ना, सुबह सुबह निकल जाते थे अपने टास्क करने के लिए, और एक टास्क खत्म नहीं हो पा रहा था फिर दूसरा तैयार हो जाया करता था। दोज वर द डिफिकल्ट ओल्ड डेज ऑफ गिरमिट, यू नो। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सी व्हाट यू गोइंग टू प्ले।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा, बागों में बाहर है? गर्मियों की निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: नहीं।

0: है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है? ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना।
2: अंत में हारना ही पड़ा। और चलिए दोस्तों, और इस समय ठीक 8:30 बज गया है। माय गॉड,
3: टाइम इज रनिंग।
2: तो चलो एक ये गीत सुनते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। जी दोस्तों,

जी हाँ दोस्तों, काफी लंबा गाना था लेकिन गाना भी बहुत खूबसूरत। और चलो ओके, अच्छा लगा। और तुम्हें समय भी जा रहा है, कोई 20 मिनट रह गया है 9 बजने में। और आपको याद दिला दूं, 9 बजे भूलना मत, सताक्षी के साथ आप हो जाएंगे, ठीक है। और फिर 11 बजे से संदेश के साथ अपना पंजाबी प्रोग्राम, 3 बजे निविया के साथ। कभी कभी निविया का थोड़ा देर हो जाता दोस्तों, क्योंकि जब वह मूसलाधार

0: बारिश जब होती है दोस्तों तो टैक्सी भी नहीं चलता, यू नो दैट. सो शी वॉज लकी यस्टरडे, शी कुड फाइंड अ कैब टू गो टू द स्टेशन, तो इसीलिए आधा घंटा देर हो गया था, लेकिन स्टिक अराउंड, शी विल बी देयर. ओके, व्हाट आर यू प्लेइंग?
1: आई वांट टू प्ले ऑपोजिट टू व्हाट यू
0: जस्ट प्लेड.
1: प्लेड.
0: ओए.

0: भूल कोई हमसे ना हो जाए दोस्तों। और अगर आप ये मूवी नहीं देखें तो इटली से पार्ट जाकर देख लो, आपको अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप सभी ने साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। अमिता, यू वांट टू से समथिंग?
1: आई वुड लाइक टू से हैव एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल वीकेंड, अ सेफ वन। वी विल सी यू ऑल ऑन मंडे।
0: और कल का जो प्रोग्राम भूलना मत, ठीक है।
1: नो,
0: नीलम,
1: नीलू विल बी हियर।
0: नीलू, प्यार से हम नीलू बोलते हैं। और परमा भाई के साथ आप सुनेंगे सैटरडे को, ठीक है। संडे को मैं कोशिश करके प्रोग्राम करूंगा, कोशिश करके।
1: क्यों कोशिश? आई थॉट इट विल बी डेफिनेट। व्हाई? एनीवे, एवरीवन हैव एन एब्सोल्युटली वंडरफुल वीकेंड एंड टेक केयर एंड नमस्ते एंड वी विल सी यू ऑन
0: मंडे। ख्याल रखिएगा दोस्तों,
1: ठीक है।
0: बाय बाय।

गुड मॉर्निंग माय लवली पीपल्स, रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर एक बार फिर से है सताक्षी आपके साथ और लेकर आ गई हूँ आपके लिए आज फिर से इट हैपेंस, जहाँ बहुत ही शानदार बातों का ये साथ, क्योंकि ये साथ है हमारी मॉर्निंग का, ये साथ है हमारे नए दिन की शुरुआत का, ये साथ है हमारी अपॉर्चुनिटीज का, ये साथ है हमारे गोल्स का, ये साथ है हमारे सपनों का। सपने जो इतने सालों से हम दोनों मिलकर साथ देखते आए हैं, तो उन्हें पूरा करने का जब दिन आया तो भी तो हम साथ साथ चलेंगे, या उन पर काम करने की जब बात हुई है तो भी हम साथ चलेंगे। तो लीजिए आज फिर से रेडियो ब्रिस्पानी पर सताक्षी है आपके साथ और लेकर आई हूँ आपके लिए आपके ब्रेकफास्ट शो को। सो बहुत सारी बातें हैं, जबरदस्त अंदाज और जबरदस्त गाने, आइए शुरू करते हैं इट हैपेंस इस अगले ट्रैक के साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्पानी।

रेडियो ब्रिस्पानी पर सताक्षी को सुन रहे हैं और सुन रहे हैं इट हैपेंस। और ये पल जिनके लिए खास है, यानी कि आज इनका बर्थडे है, उन सभी को जन्मदिन बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक। भाई देखिए, सताक्षी की इतनी ख्वाहिश है, इतनी दरख्वास्त है कि आपके पल जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत रहें, है ना। तो आपका जन्मदिन अगर आज है और आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम बस यही चाहेंगे कि आपकी जिंदगी की खुशियां जो हैं वो जबरदस्त रहें और हर दिन जो है वो आपके लिए एक नया आगाज और बेहतर अंदाज हो। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, बहुत बहुत मुबारक हो एक दूसरे का साथ। बस अपना प्यार मोहब्बत और एक दूसरे पर भरोसा यूं ही बनाए रखिए। जिनके लिए ये दिन है स्पेशल और खास, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्पानी।

आप एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर. यू नो गुस्सा कुछ लम्हों का होता है, लेकिन उसमें लिया गया डिसीजन आपको बहुत लंबे समय तक इफेक्ट कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है. इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी से नाराज हैं, किसी से खफा हैं, किसी से बदला लेने की सोच रहे हैं, तो गुस्से वाला वक्त गुजर जाने दीजिए. क्योंकि कई बार ना जब गुस्से में आप होते हैं तो आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो आपको हार्म करते हैं और उस रिश्ते को तो हार्म करते ही हैं. लेकिन वही जब गुस्सा पिघल जाता है तो आप सही और गलत में डिफरेंशिएट कर पाते हैं. आप ये समझ पाते हैं कि आपको उस इंसान को कैसे ट्रीट करना है या किस तरह से आपको जो भी आपके साथ हुआ या जिस बात पर आप नाराज हैं, क्या वो बात वाकई इतनी बड़ी थी या फिर आप जो गुस्सा दिखा रहे थे वो ज्यादा बड़ा था, है ना. तो इसलिए कभी भी गुस्से में कुछ भी डिसाइड मत कीजिए, शांत हो जाइए और उस वक्त को गुजर जाने दीजिए, उसके बाद फैसला जरूर लीजिए. और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो प्रसारणी 1701 एम पर.

देखिए, रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मतलब नहीं होता है, बेमतलब के रिश्ते जो कहलाते हैं ना, जिनमें किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। और उन रिश्तों में जो लोग होते हैं, कई बार उन्हें भी आपस में कोई मतलब नहीं होता है। वो रह तो रहे हैं साथ 4 साल, 5 साल, में भी कभी कभी 20-20 साल से वो साथ हैं, लेकिन एक दूसरे से मतलब नहीं है। और अगर किसी एक को दो में से मतलब है भी, तो वो बेचारा अकेला खुद ही उस रिश्ते में परेशान होता है, क्योंकि दूसरे वाला तो कुछ भी हो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। आपने भी कई बार देखा होगा कि आप एक बंदे के साथ 2, 4, 5 साल, 10 साल से हैं, लेकिन जब आपने उसको टेस्ट किया, आपको उसकी जरूरत फील हुई, या लाइफ में आप उसको लेकर आगे बढ़ने की सोची आपने, या आपने एक एक डिसीजन लेना चाहा उसके साथ, आपने उसकी जरूरत को फील किया, आपने चाहा कि वो आपके साथ स्टैंड ले, आपके साथ खड़ा हो, आप देखते हैं कि वो बंदा इन्वॉल्व नहीं होता है। और उस वक्त आप समझते हैं कि आप इतने साल से गलत रिश्ते में इन्वेस्ट करते आ रहे थे। तो हाँ, रिश्तों में अगर मतलब बिल्कुल खत्म हो जाए तो भी रिश्ते बेमतलब हो जाते हैं। स्टे ट्यून्ड, इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी पर, आप हैं सताक्षी के साथ।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.